0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165-416-213-11।
1: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तुहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुण वधिया रेट्स ते, क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मार्ट। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दालां, आटा, देसी घिओ, मसाले, टी, स्नैक्स जां फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस लई अज ही विजिट करो अनाज मार्ट, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते, 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42, ए ब्रैम्पटन। कॉल 9059288857 अनाज मार्ट।
2: अगर तुसी खेतां विच कम करके ढेर सारे डेली डालर कमाउणा चाहुंदे हो तां इह सूचना तुहाडे लई है। संपर्क करो अजैब सिंह सहोता जो मिल्टन, कैलडन, ब्रैम्पटन, माल्टन, मिसिसागा विचों घरों पिकअप करदे हन ते वापसी ते पेमेंट डेली भी तुसी लै सकदे हो 7 डेज कम। वधेरे जानकारी लई कॉल करो अजैब सिंह सहोता 416-561-88-5668-8882।
3: खुशियां दे जश्न बनाओ ते रुसियां नू मनाओ, अपनियां नाल बैठ के ताजे स्वादले जायकेदार फूड दा लुत्फ उठाओ। लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट आओ, ताजियां स्वादलियां मिठाइयां अते जायकेदार फूड लई हमेशा याद रखो लाली स्वीट्स, जित्थों तुसी डाइन इन या टेक आउट भी लै सकते हो। ग्रेट फूड, बेस्ट सर्विस लई लाली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पहुंचो 499 री लॉसन बुलेवार्ड, ब्रैम्पटन। कॉल 905-450-6464-6464।
4: लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट, लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट।

0: பேர் ஹுடுப்புலயோ நான் பிரசிடென்ட் கன்வென்ஷன் சென்டர். பிரசிடென்ட் கன்வென்ஷன் சென்டர்
1: ஸ்வீட் மஹல் வாலியாத பிராண்ட் நியூ பிரசிடென்ட் கன்வென்ஷன் சென்டர். 100 தோ லேக்கே 700 தி கெபாசிட்டி, டெலிஷியஸ் ஃபுட், குல்லி டுல்லி பார்க்கிங், பியூட்டிஃபுல் ஆம்பியன்ஸ், மீட்டிங், வியா, பர்த்டே பார்ட்டி, அனிவர்சரி ஹோவே யா கோய் பி ஃபங்க்ஷன், புல்லியோ நா ஸ்வீட் மஹல் வாலியாத பிரசிடென்ட் கன்வென்ஷன் சென்டர், 1130 கிரெடிட் ஸ்டோன் ரோட், வான். ஃபார் புக்கிங் கால் 416-433-9191.
0: பிரசிடென்ட் கன்வென்ஷன் சென்டர்.
2: बाबा जी मेरा ब्याह नहीं हो रहा, कोई मंत्र था फूको बच्चे थे
3: 647-888-6000।
2: बाबा जी आकड़ा मंत्र है
3: बच्चा, ए नंबर चमत्कारी है, जिन्हें मिलाया ओदी समझो ब्याह दी तैयारी है।
2: पक्की गल बाबा जी,
3: बाबे दा घर भी एना ने बसाया है, NRI मैरिज ब्यूरो।
4: हर कास्ट अते हर प्रोफाइल दे रिश्ते ले परोसे दा नाम NRI मैरिज ब्यूरो। कॉल 647-888-6000 और विजिट NRIMB.com।
5: हाय मेरे तो पैर ही पुंजे नहीं लग रहे, मेरी निक्की भैन का व्याह, मैं तो अपने सारे चा पूरे करांगी।
6: क्यों नहीं चन करे, कहे तो सिर तो पैर तक सोने च बढ़ा दें।
5: ठीक है जी, चलो फिर सब तो वध वैरायटी वाले अशोक ज्वेलर कोल, उना कोल गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी दे सारे लेटेस्ट वैरायटी दे गहने ने, सेट, रानी हार, छापा, मुंदरियां, छल्ले, बिस्कुट, चेनिया, वंगा, कोके, टिक्के, कड़े, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, सब कुछ प्योर ते यूनिक।
6: हां नाले मैं साड़ी दियां बाहां वी तां मिंगियां करनियां ने, 12 चूड़ियां उनू भी ले दांगे।
5: तो मेरे जीजे ली घड़ी,
6: आहो अशोक ज्वेलर कोले रेड ओदियां रोलेक्स दियां सारियां घड़ियां हुंदियां ने।
5: चलो फिर छेती चलो, अशोक ज्वेलर 7198 रोड मालटन इन अशोक प्लाजा, फोन नंबर है 9056714290।
7: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, इत्थों तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन, फ्रिज, स्टोव, डिशवाशर, लॉन्ड्री लई वाशर एंड ड्रायर दे नाल, अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अप्लायंसेस लगवाना चाहुंदे हो, डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम, नंबर 905-799-0045, 905-799-0045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स।
8: इस हॉलिडे सीजन अपनी हर पार्टी के लिए लव साथ को अपने

0: What's happening in Lincoln? We've got the local tea. Stories, people, and places from across our community. Listen twice a month wherever you get your podcasts or visit speakuplincoln.ca/podcast. The Lincoln Local. It's the talk of the town.
1: 390.
2: रोज दे खाने तो हो गया बोर।
3: ट्राई करना चाहते हो कुछ होर?
4: ताजे स्वादले चाइनीज खाने ले आज ही पहुँचो एशिया गार्डन चाइनीज रेस्टोरेंट 2648 इस्लिंगटन एवेन्यू इटोबीको। फोन नंबर 4167498333 यानी 416-749-8333। जे वधिया स्वादला चाइनीज है खाना ता एशिया गार्डन चाइनीज रेस्टोरेंट ही आना।
5: एशिया गार्डन चाइनीज रेस्टोरेंट।
6: ਰੇਟਸ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।
7: ਸਸਤਾ

0: आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट की किसी भी लोकेशन पर आइए और गणपति पूजा के लिए मोदक ले जाइए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: राजनीति का अच्छे अच्छों को चूस कर गुठलियां फेंक दी है।
1: पिंड चोटियां चर्चा दे विच पहले तेरा वे राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया खेरा वे पंडता खाली कितड़ बहे नूरे लाई आउणगियां हुण नी जज जमानत दिंदा।

0: This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: लावल जाओ। आपको सूचित किया जाता है कि ये गाना सुन के काफियों की फटकर चार होने वाली है, इसीलिए ये गाने को अंदर खाते में ही सुने। धन्यवाद जी।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

नागिन कितने शॉट्स पिए नागिन फिर कभी बाएं फिर कभी दाएं नाचे तू जैसे नागिन कहीं तेरा फोन है कहीं तेरे शूज है थोड़ी गुस्से है थोड़ी कंफ्यूज है लगती है प्यारी पर उड़े तेरे फ्यूज दिल करे ब्रेक तू ब्रेकिंग न्यूज है तेरे प्रिटी फेस पे फंस गया गलती हुई मैं तुझे देख के हंस गया मेरे सिचुएशन पे ना लाफ करो मुझसे दूर रहो मुझे माफ करो।

तेरी यादों के सहारे जी रहा हूं, क्योंकि तू ही है आशिकी, तू ही है बंदगी। कभी सोचा ही नहीं था कि तेरे बिना भी जीनी पड़ेगी जिंदगी।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागे।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है।

में गाँव है रेला ऊंचा पाँव यू पटका है ये देसी मेला कैसा रहा यकायकी नाचो नाचो नाचो नाचो अरे धूम धूम थिरके जा पाँव में जान जगा धुमक धुमक नाचे जा।

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: Burst the music.

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुल्यो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर, शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी, योर वॉइस, योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार, तुहाड़ा अपना CJMR 1320। CJMR
2: 1320। जीना या मरना इंसान दे हाथ नहीं, परंतु इस संसार तो तुर गए प्राणी दा उस दिया धार्मिक रौ रीतां दे नाल उसनु विदा करना असाडे वस है। अपनी संस्कृति अपनी धार्मिक रौ रीतां मुताबक अंतम रस्मा वेले याद रखो, रैक्सडेल दे विच लुटस फ्यूनरल होम जिथे अंतम दर्शना तो लैके दाह संस्कार दी रस्मा इको ही छत थले हुंदियां हन। लुटस फ्यूनरल होम दा सारा स्टाफ तुहाडी भाषा पंजाबी हिंदी भी बोलदा है। वधेरे जानकारी लई कॉल करो सरदार हरमिंदर सिंह हंसी 647-547-8188। लोटस फ्यूनरल होम।

0: तन ते पाया कपड़ा चौबी पार पार के लाउना ओए मनाना कर मन आईया एक दिन पैना ही पछताउना।
1: जे बिजनेस दा करना चाहुंदे हो प्रचार मां रंगला पंजाब रेडियो ते IPTV ते प्रमोशन ली आज ही कॉल लाओ सरकार 416-716-7094 मंडे टू फ्राइडे 11 AM to 12 PM एंड 6 PM to 10 PM तुसी 24/7 IPTV ते भी अपने बिजनेस दी प्रमोशन करा सकते हो आज ही कॉल करो 416-716-7094।
2: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network, Toronto.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1115 416-213-1165।
1: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
2: HK Movers,
1: local and long distance, we also ship cars, tailor transport and moving services.
2: For service with a smile, give us a call.
1: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
2: 416-524-6704.
1: Visit 140 Advanced Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
3: Long distance moving specialist,
1: HK Movers.
4: ਰਿਟਸ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ।
5: ਸਸਤਾ

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

ऐसो शांति नहीं भूलते। मैं शुरू के ये नहीं मारेंगे, मैंने इंदिरा जी को ये इलाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: नहीं दीगा। अच्छे अच्छों को चूस कर गुठलियां फेंक दी है।
1: पिंड चोटियां चर्चा दे विच पहले तेरा वे, राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया खेरा वे, पंडता खानी कितड़ बहनों रे लाई आउणगियां हुण नी जज

दो, जलने दो, समाने को जलने दो, बदले की आग में उसको भी मरने दो, जलने दो, जलने दो, जमाने को जलने दो, बदले की आग में उसको भी मरने दो।

ज्यादा ना सुना कर उनके, तू ज्यादा ना सुना कर उनके, बस अपने ही किया कर मन के, बस अपने ही किया कर मन के। देख तुझे जलती है जिनकी, हाँ देख तुझे जलती है जिनकी, क्यों फिक्र करें, क्यों फिक्र करें फिर तू उनकी।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320 सज

आता माझी सटक सटक बम तेरा गोते खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए। Come on baby, kick it, kick it, काटू तेरी टिकट टिकट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: करे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शकर शकर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: Yeah. Heartbeat.

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

छड़ी ना दिखाओ। गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

महकती है सदियां, खुशबू का दर है ये शहरे मोहब्बत, मेरा हम सफर है केसर के रंगों को ओढ़े है शब भर, है दिलचस्प बातें, है दिलकश ये मंजर, जो मांगी दुआ में मन्नत

जोड़े है झेलम का पानी, सफर तू बता मुझको चलना किधर है, मुझको तलब खुद से मिलना किधर है, जो मांगी दुआ में मन्नत यही है, सच तो है दुनिया की जन्नत यही है।

0: जब करेगा दुआ कोई यार के लिए खुदा भी टाल देगा, जब होगी बात बेवफाई की जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा, जग तेरे मेरे इश्क की मिसाल देगा।
1: रियल न्यूज, रियल इम्पैक्ट, शोइंग यू रियल वर्ल्ड। CJMR 1320, CJMR 1320, द वॉइस ऑफ द सिटी।

0: तन ते पाया कपड़ा जो भी पाड़ पाड़ के लाउना ओए मनाना कर मन आईया एक दिन पैना ही पछताउना।
1: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: लव साउथ से केटरिंग करवाओ और ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवरफुल डिशेस का मजा उठाओ। इडली, करी, सांबर, उत्पम, डिजर्ट्स और बहुत कुछ। विजिट lovesouth.ca। लव साउथ।
1: अगर तुसी खेतां विच कम करके ढेर सारे डेली डालर कमाना चाहुंदे हो तां इह सूचना तुहाडे लई है। संपर्क करो अजैब सिंह सहोता जो मिल्टन, कैलडन, ब्रैम्पटन, माल्टन, मिसिसागा विचों घरों पिकअप करदे हन ते वापसी ते पेमेंट डेली भी तुसी लै सकदे हो। 7 डेज कम। वधेरे जानकारी लई कॉल करो अजैब सिंह सहोता 416-561-8882 416-561-8882। की तुसी अपने घर विचले IPTV बॉक्स ते पूरे विश्व भर दे हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मद्रासी, तमिल, पाकिस्तानी चैनल, फिल्मां, सीरियल, ड्रामे, न्यूज, बच्चों के चैनल अनबीटेबल कीमत दे देखना चाहते हो तो भारी बचत लई अज ही कॉल करो 6475545859 6475545859।
2: साडा पटोला ते साथे ओला।
3: ना जी, पिज़्ज़ा मशीन ते नहीं कोई ओला ते वैरायटी दा नहीं कोई रोला।
4: एंडलेस वैरायटी देसी मॉडर्न पिज़्ज़ा, अचारी बेस, बटर चिकन बेस, पेरी पेरी बेस, वेज ते नॉन वेज पिज़्ज़ा विंग्स,
3: अचारी विंग्स, हॉट विंग्स एंड मच मोर। कॉल 905-490-1222
4: 905-490-1222। जे तुसी भी हो तरह तरह दे पिज़्ज़े दे शौकीन ता आओ पिज़्ज़ा मशीन।
5: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto. CNN Toronto, Chawla News Network Toronto.

0: open 7 days a week. Located at 1850 Albion Road, Etobicoke.
1: Three locations to serve you.
2: इलेक्ट्रॉनिक्स दी मार्केट दे विच मशहूर नाम टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स इत्थे तुसी हर कंपनी दे हर साइज दा टेलीविजन फ्रिज स्टोव डिशवाशर लॉन्ड्री ली वाशर एंड ड्रायर दे नाल अगर तुसी अपने घर दे विच होम थिएटर सिस्टम सेटअप करना है या फिर घर दी किचन दे विच आलीशान अप्लायंसेस लगवाना चाहुंदे हो डिलीवरी ऑन टाइम लैण लई चेती रखो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स 16 इंटरमल ड्राइव एट एयरपोर्ट रोड इन ब्रैम्पटन नंबर 9057900045 0575-799-0045 Top Choice Electronics
3: ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਰੀਮੈਕਸ ਗੋਲਡ ਰਿਐਲਟੀ ਦੇ ਗੌਡੀ ਖੁਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਸਾਊਥ ਕੈਲਡਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਕੈਲਡਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਹਾਈਵੇ 10 ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ 410 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ 15 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁਣ ਸੇਲ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ ਕੈਲਡਨ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਅੱਜ ਹੀ ਪੱਕੀ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਅੱਜ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ
4: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
5: HK Movers,
4: local and long distance, we also ship cars, Kailor Transport and moving services.
5: For service with a smile, give us a call.
4: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
5: 416-524-6704.
4: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
6: Long distance moving specialist,
4: HK Movers.
7: HK Movers.
8: ਵਾਹ ਭਾਬੀ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਕਾਰਪੇਟਸ ਵੁਡਨ ਸਭ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
9: ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ GTA ਫਲੋਰਿੰਗ ਦਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਆਓ ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਲੈਮੀਨੇਟ ਟਾਈਲਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਲਾਰਜ ਵੈਰਾਈਟੀ ਪਾਓ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨਵ ਬਰਾੜ ਨੂੰ 905-605-4005 905-605-6605
10: GTA ਫਲੋਰਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ
11: GTA ਫਲੋਰਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ
12: ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਡਰਾਈਵਵੇ ਜਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟਸ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਪੇਵਿੰਗ ਲਈ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਕੈਲੀਡਨ ਪੇਵਿੰਗ
13: ਐਕਸੈਸ ਰੈਂਪਸ ਐਕਸਕਾਵੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਰੀਸਰਫੇਸਿੰਗ ਓਵਰਲੇ ਫਾਰਮ ਡਰਾਈਵਵੇ ਪੇਵਿੰਗ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਜਸਬਲ ਨੂੰ ਇਟਸ 416-818-8900
12: ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ www.calidonpaving.com
14: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਨੂਆ I'm a lawyer at Nanua and UFA Lawyers.
15: If you were involved in a motor vehicle accident, a slip and fall, or any kind of accident that results in personal injury, please let us know. We can help.
14: Sanu contact karo. Our phone number hai 647-793-6889.
16: ہر گھر کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اسے اور بھی خوبصورت بنانے کے لیے ایک سٹائلش فرنیچر چاہیے جب تلاش ہو ایسے فرنیچر کی تو یہاں آئیے سٹیونز فرنیچر جہاں آپ کو ملے گا بالکل سالڈ فرنیچر چاہے بیڈ سیٹ ہو سوفا سیٹ یا میٹریسز ایوری تھنگ سنس 1992 وزٹ ان سٹور فار مچ مور 2575 سٹیلز ایونیو ایسٹ برامٹن 905-790-0560 سٹیونز فرنیچر
17: کار دا ایکسٹیریئر ہوئے ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਲੁੱਕ ਹੋਵੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਮਾਲ ਓਰਕਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਬਿਲਡ ਟੂ ਲਾਸਟ ਮੈਨਸੂਰੀ ਤੇ ਸਟੋਨ ਵਰਕ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਫੈਂਸਿੰਗ ਪੈਡੀਓ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਹਾਰਡਸਕੇਪਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਓਰਕਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰਿਪੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਓਰਕਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-888-688-8956 या 416-474-6836 Oracle Construction Strong Foundations Lasting Results
18: विश्वास प्रतीक ना रवि गुलाटी हुन नवे अंदाज विच रवि गुलाटी लॉ ऑफिस लीगल सेवा वादा काम हो गया जे सौखा मारो एक आवाज अजेहे कमा वास्ते रियल एस्टेट क्लोजिंग नोटराइजेशन एफिडेविट्स डेक्लेरेशन जा स्पॉन्सरशिप लेटर्स पावर ऑफ अटर्नीज बच्चा लाई कंसेंट लेटर्स बैरिस्टर सोलिसिटर नोटरी पब्लिक रविंदर पाल सिंह गुलाटी 905-232-8700 905-232-8700 अपॉइंटमेंट वास्ते लॉग इन करो notaryhelp.ca रवि गुलाटी लॉ ऑफिस ठीक सलाह बल्ले बल्ले
7: मेरे हाथ मिनो नो चूड़िया है।
10: आज ते चान नालो ज्यादा तू सोनी लग रही है।
19: तुसी भी आओ अपनी खूबसूरती नु सजाओ स्कार प्रो टेक्सटाइल नाल।
10: पाओ सूट साड़ीज लहंगा ज्वेलरी अते फैशन एक्सेसरीज
19: ब्यूटीफुल ज्वेलरी एंड मच मच मोर।
10: आज ही पहुँचो
19: स्कार प्रो टेक्सटाइल 2659 Islington Avenue at Albion. Call 416-742-0010 416-742-0010
2: नोट करो कि जेकर तुसी अपने घर जा बिजनेस अदारे दे विच प्रोफेशनल पेंट द्वारा पेंट करवाना चाहते हो तो चेते रखो गिल हाउस पेंटिंग जो तुहाडे घर दे विच पेंट तो पहला हर एक कोना प्रॉपर तरीके नाल कवर करदे हन। वाजिब रेट अते समय सिर काम करवाउण लई अते एस्टीमेट बिलकुल फ्री लैण लई कॉल करो कमल गिल 647-833-5960 647-833-5960 गिल हाउस पेंटिंग पिछले 20 सालों तो कस्टम वुड वर्किंग दिया प्रोफेशनल सेवावां प्रोवाइड कर रहा नाम मेपल वन किचन एंड बाथ इंक गूगल ते 5 स्टार रेटिंग हासिल कर चुकी वुड वर्किंग कंपनी द्वारा। अगर तुसी अपने घर दी हाई एंड किचन कैबिनेट क्लोजेट बार टीवी यूनिट या डॉक्टर ऑफिस डेंटल ऑफिस ऑप्टिकल स्टोर दी वुड वर्किंग दा काम अपने बजट अते समय सिर करवाना चाहते हो तो चेते रखो मेपल वन किचन एंड बाथ इंक 173 एडवांस बुलेवार्ड यूनिट 34 ब्रैम्पटन और 9054580075 9054580075 मेपल वन किचन एंड बाथ इंक लंबे समय तो कम्युनिटी विच परख्या होया नाम एनी टाइम होम रेनोवेशन सिटी तो बकायदा परमिट लेके तुसी अपने घर दी लीगल बेसमेंट तैयार करोनी है या वाशरूम प्लम्बिंग किसी भी तरह दी रेनोवेशन दे कमा नु समय ते करवाउण लई चेते रखो एनी टाइम होम रेनोवेशन वधेरे जानकारी लई कॉल करो 647-271-1735 647-271-1735 एनी टाइम होम रेनोवेशन। नोट करो कि तुहाडे शहर दे विच खुले होम फिक्स तो तुसी अपने घर दी रेनोवेशन लई हर तरह दीआं जरूरतां पूरीआं कर सकदे हो। हार्डवुड लैमिनेट वख-वख तरह दी फ्लोरिंग पोर्सलिन टाइल्स सिरेमिक टाइल्स फॉसेट्स प्लम्बिंग एक्सेसरी डोर विंडो ड्राइवर्स खिड़कियां दरवाजे आदि रहना चाहते हो तो होम फिक्स ते आओ 2657 डंडा स्ट्रीट वेस्ट मिसिसागा 20 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड ब्रैम्पटन और कॉल 905-796-2555 9057-9595 If you need your home fixed, call Home Fix Diamond and Diamonds Personal Injury Lawyers। ये कर तो हड़ा कार वैन ट्रक चलाउंदे समय एक्सीडेंट हो गया है या फिर तुसी किसी जगह ते तिलक के डिग पए हो कसूर तो हड़ा है या नहीं तुसी पहला वांगू हुण काम ते जा अपने व्यापारक अदारे ते नहीं जा सकते सारे खर्चे ज्यों दे त्यों बरकरार हन उपरो इंश्योरेंस कंपनियां भी आना कानी कर रही हन तुसी सोच रहे हो करिए ता हुण की करिए कचीचियां ना वटो बस एक नाम याद रखो किसी भी तरह दे एक्सीडेंट होने दी सूरत विच तुहाडे हक्कां दा रखवाला मानसिक पीड़ा दे नाल शरीरिक दर्दां दी मलम डायमंड एंड डायमंड पर्सनल इंजरी लॉयर्स फ्री सलाह मशवरे लई अज ही कॉल करो अमनदीप चावला 1800567HURT 4878 और डायरेक्ट नंबर 416-557-5010 416-557-5010 डायमंड एंड डायमंड्स पर्सनल इंजरी लॉयर्स। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚਲੇ IPTV ਬਾਕਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੰਗਾਲੀ ਮਦਰਾਸੀ ਤਾਮਿਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੈਨਲ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਡਰਾਮੇ ਨਿਊਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਅਨਬੀਟੇਬਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਬਚਤ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6475545859 6475545859
20: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320, the voice of the city.
21: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network, Toronto.
22: CJMR 1320 एम फ्रीक्वेंसी रेडियो प्रोग्राम टीवी प्रोग्राम अगला पंजाब में आपकी होस्ट हैं दोस्त संजू सिक्का पेशे खिदमत है आपकी नजर में आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले आपका तापमान राइट नाउ 16 डिग्री सेंटीग्रेड है फील्स लाइक 16 कल का हाईएस्ट 21 लोएस्ट 7 रहेगा एंड अ क्लाउडी डे। खबरों की सुर्खियां आप सबकी खिदमत में बिजनेसेस को अतिरिक्त तैयारी करनी चाहिए नया कैनेडा के लिए यूएस रिलेशनशिप के साथ साबका डिप्लोमेट जो की थी अमेरिका में कनाडा की उन्होंने आज इस बात के लिए तवज्जो दिया है। उन्होंने कहा कि हमें नया पाथ नया रास्ता चुनना ही पड़ेगा कहा है क्रिस्टन हिलमैन ने बैम्फ के अल्बर्टा में उसके रिमार्क्स तब आए हैं जब ओपनिंग हुई 27th एनुअल ग्लोबल बिजनेस फोरम का, जो कि थर्सडे और फ्राइडे को फेयरमाउंट बाम स्प्रिंग्स में हो रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जिन्होंने 2020 में अमेरिका में कनाडा को रिप्रेजेंट किया था एज द एम्बेसडर, कि हमें प्लानिंग करनी चाहिए, कंपनीज को समझना चाहिए कि जो दहाकों से हमारा रिश्ता चल रहा था अमेरिका के साथ, अब वो बदल चुका है और साथ ही साथ हमें और इंटरनेशनल मार्केट्स में अपने कदम बढ़ाने चाहिए। पुलिस ने मुलाकात की है पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से, और जब मॉन्ट्रियल में एक औरत मारी गई ड्यूरिंग अ वीडियो कॉल, प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने भी कहा है कि बहुत ही दुखद हादसा है और बहुत ही दुखद बेहद भीषण क्राइम भी है। मॉन्ट्रियल के पुलिस एसपी वीएम इन्वेस्टिगेटर्स मुलाकात की है उस व्यक्ति से जिसने की लैला बेन सालमन की बहुत ही भीषण तरीके से उसके अपार्टमेंट में हत्या की गई है। नहीं, अभी तक इस मामले में कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। पुलिस ये नहीं बताती कि क्या इंडिविजुअल जिसको रिलीज कर दिया गया उसका कोई रिलेशनशिप था बेन सालम जो कि विक्टिम है, जिसकी मौत हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। इसके साथ ही साथ ब्रिटिश कोलंबिया में क्रिमिनली चार्ज ब्रिटिश कोलंबिया इनकमेंट एक बार फिर से इलेक्शन में री इलेक्शन में अपना नाम उन्होंने दर्ज करवाया है और एक दूसरा जो है वो सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं कैंडिडेसी को लेने के लिए। जॉर्डन कीली ऑलरेडी कन्फर्म कर चुके हैं कि वो री इलेक्शन में पीस रिवर नॉर्थ से अपना नामांकन करेंगे और उनके ऊपर भी क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। और दूसरे भी जो है वहां पर हॉन चैंग, उन्होंने भी सीटीवी न्यूज को कहा है कि मैं सीरियसली कंसीडर कर रहा हूं कि मैं री इलेक्शन में आऊंगा। उनका नाम भी क्रिमिनल चार्ज की लिस्ट में है। टीचर नवस्कोशिया के एक स्कूल में फेस करिए चार्जेस, उस पर इल्जाम है कि उसने असॉल्ट किया नवस्कोशिया के स्कूल में स्टूडेंट्स को। 53 ईयर ओल्ड है जिनके ऊपर ये चार्ज है। उन्होंने गला दबाने की कोशिश की एक बच्चे की, जिसकी वजह से वो चार्ज है। एक औरत ने टैनरॉल की ओवरडोज की वजह से इसकी मृत्यु हो गई है। प्रॉम्प्ट की जा रही है कि पैकेजिंग छोटी होनी चाहिए टैनरॉल की पैकेजिंग के लिए और जब हम उसको ऑन द काउंटर लोगों को देते हैं। प्री मेडिटेड और टारगेटेड थी। बेलविल की ज्यूइश जो रिलीजियस स्थान है उसके पास शूटिंग हुई, जो कि अपने आप में एक बहुत ही दुखद घटना थी। नई डिटेल्स बताई जा रही है कि वो हेट मोटिवेटेड क्राइम था। इसके साथ साथ कनेडियन बॉर्डर ऑफिशियल्स ने बरामद किए सूटकेसेस 3 जो कि पूरे भरे हुए थे कोकेन और हशीश से पियर्सन एयरपोर्ट के ऊपर, और इसमें 44 किलोग्राम हशीश और 13 किलोग्राम कोकेन थी। एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया और रिमांड किया गया टू रॉयल कनेडियन माउंटेड पुलिस में। ये फ्लाइट जो थी 20 सितंबर को श्रीलंका जा रही थी। और रेंट जो है काफी ज्यादा, तकरीबन 4.8% गिरे हैं उन एरियाज में जो कि टैरिफ एक्सपोज्ड एरिया है कनाडा में, रिपोर्ट बताती है। एवरेज जैसे कि ओशवा सिटी में देख लें, हैमिल्टन में, किचनर में, कैम्ब्रिज में, वाटरलू में, विंडसर में, कैम्ब्रिज में काफी घरों के रेंट जो अब देखते हुए गिरते हुए दिख रहे हैं अराउंड 4.8%। इसके साथ बॉनी क्रॉम्बी का कहना है कि वो चाहती है कि एक्सटेंड करें लाइन 2 सबवे इनटू मिसिसागा और इंटरनल अनाउंसमेंट की 1 मिलियन डोनेशन की सपोर्ट करने के लिए यूक्रेन की इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी। मुस्लिम एक औरत थी, उसको पंच किया गया मुंह के ऊपर बहुत जोर से जब वो टीटीसी बस से नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी। कनेडियन बॉर्डर ऑफिशियल एक बार फिर से बताया कि कोकेन और हशीश बरामद की गई है। इससे आरसीएमपी का कहना है कि और अतिरिक्त सख्त कदम उठाने पड़ेंगे ऐसे हशीश को कनाडा से बाहर भी जाने में। यह था खबरों का खास बुलेटिन आप सबकी खिदमत में। देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप रेडियो प्रोग्राम रंगला पंजाब में, आपकी होस्ट एंड दोस्त अंजू सिक्का।
20: रियल न्यूज, रियल इम्पैक्ट, शोइंग यू रियल वर्ल्ड। CJMR 1320
2: द चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो तुसी सुन रहे हो। खबरां दे इस हिस्से नूं स्पॉन्सर कर रहे सन टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। याद रहे कि जदों भी तुसी ब्रैंड न्यू कोई फ्रिज, स्टोव, डिश वाशर, वाशो ड्राइजर, हाई एंड दे अपलायंसिस लैके आना चाहते हो ਤਾਂ ਟਾਪ ਚੋਇਸ ਦਾ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ। ਇੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 16 ਇੰਟ ਮੋਲ ਡਰਾਈਵ ਬਰੈਂਪਟਨ, 5461 ਹਾਈਵੇ 6 ਨਾਰਥ ਗੋਲਫ। ਟਾਪ ਚੋਇਸ ਨੰਬਰ 905-799-0045-799-0045 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮਿਲਟਨ, ਕੈਲਡਨ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਾਲਟਨ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਘਰੋਂ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਡਰਾਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਲੀ ਪੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ 416-561-8882।
22: ਪੀਜ਼ਾ ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਲੀਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। 2 ਲਾਰਜ ਪੀਜ਼ਾਸ, 4 ਟੋਪਿੰਗਸ ਔਨ ਈਚ ਪਲੱਸ ਪੋਟੇਟੋ ਵੈਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ 2 ਡਿਪਿੰਗ ਸਾਸਿਸ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਫਾਰ $24 ਐਂਡ 99 cents. Two Philosopher Trail, Brampton, wicket deal available. Hai ye. Number 9054901222. Nanua and EOFI lawyers, the team, jekar tusi car accident, slip and fall, personal injury, koi case hai ga, family matter, immigration, litigation, commercial, ya phir employment law de ta, tusi legal advice, professional suggestions de talash de vich hai. To call karo ana de bahut hi vadhiya professional team nu, Nanua and EOFI lawyers. Call kar sakde ge 647-793-6889. Aur jekar apne kar di dikhnu tusi vadhiya karana chahunde outside exterior. इस वक्त गर्मी खत्म होने वाली है, इस करके उन्होंने स्पेशल रेट्स लगाए हुए हैं इस कंपनी ने. और कंप्लीट एक्सटीरियर कंस्ट्रक्शन मेसनरी वर्क हैगा, इंटरलॉकिंग, पेविंग, चिमनी दी रिपेयर कराना चाहते हो, पैटियो बनवाने, नए स्टेप्स बनवाने, फेंसिंग, नई तुसी ग्रास लगवाना चाहते हो, सॉडिंग एंड लॉन दी सॉड इंस्टॉलेशन, लैंडस्केपिंग, पूल बनवाना है, सारे के सारे काम के लिए बॉन्डेड है, इंश्योर्ड प्रोफेशनल टीम आना दी है. ओरेकल कंस्ट्रक्शन, नंबर टू कॉल देयर टीम 416-474-6836. राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, 26 लोकेशन, 100% प्योर वेजिटेरियन खाना सर्व किया जाता है और मिठाइयां बहुत ही लाजवाब जी. पहुंचो राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट. एचके मूवर्स एंड स्टोरेज बेस्ट है जी, जीटीए द बेस्ट लोकल लॉन्ग डिस्टेंस मूवर्स ने. स्टोरेज सर्विसेज, कार्गो सर्विसेज, पैकिंग सर्विसेज, स्पेशलिटी मूविंग कोई करना चाहते हो, जंक रिमूवल करवाना चाहते हो, लेबर ओनली सर्विसेज चाहिए ने, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ऑल ओवर कैनेडा. नंबर टू कॉल हरमिंदर, HK Movers and Storage, 416-524-6704. Sandhu Dentistry, Gore Ibnazar, location at 4550 Ibnazar Road, Brampton. Ate Shale location at 510 Shale Boulevard, also in Brampton. Any type of dental treatment, implant, gum surgeries, dentures, root canal treatment, danda di whitening, polishing, bleaching, tapocho, Sandhu Dentistry, number to call 905-455-8585.
0: Anas Mart di grand opening hoi hai, balle balle ho gaya, chaat phire Anas Mart. ग्रैंड ओपनिंग ते लगी भारी सेल दा तुसी अजे भी फायदा चुक सकदे हो. 6141 मेफील्ड रोड, मेफील्ड ते एयरपोर्ट, ब्रैम्पटन दा एरिया, नंबर 905-928-8557. अनाज मार्ट ते वड्डी सेल चल रही है. प्रोग्राम दा हिस्सा प्रेजिडेंट कन्वेंशन सेंटर ते स्वीट मेल दे सुखराज कांगुणा वालों जिथे स्पॉन्सर किया जा रहा, उथे उन्हां दा नंबर है 416-679-9999, बैंकट हॉल 416-433-9999.
22: जी काव्य होमोकेयर दी गोल्ड मेडलिस्ट होमोपैथ मीता उजा जी, बहुत ही प्रोफेशनल, अते इन्हां दे हाथ दे विच हुनर हैगा जी. आर्थराइटिस, इनफर्टिलिटी, स्किन इशूज, थायराइड डिसऑर्डर, कोई भी बीमारी अक्यूट या क्रॉनिक तुसी खत्म करना चाहते हैगे हो, तां फिर कॉन्टैक्ट करो काव्य होमोकेयर दी मीता उजा जी, नंबर 6.